0: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा,
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
3: देश का टायर, जेके टायर।
4: द फ्रंट लाइंस ऑफ कारगिल, द फ्यूरी ऑफ ऑपरेशन सिंधु,
5: so many attacks,
4: the chaos and cries of disaster zones,

0: देश का टायर, जेके टायर।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा,
5: सबका राजा आकर मसाला।
6: 5 hours to go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Siddaramaiah. NDTV stands completely engaged with Karnataka.
7: High rate, check the audio. High rate, check the audio.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा।
8: India Inc.'s most respected names chose India Inc.'s best and brightest.
9: These kind of awards and jury lineup, you are truly giving it the right weightage.
10: I think it's heartening to see talent that there is in across India Inc.
11: We should be awarding companies and individuals who have focused not only on growth but also on bringing.
12: Welcome back, this is Reet Kaur Sahani and you're watching NDTV. Let's now take you to Punjab. Now, the Punjab political temperature is now rising. Ahead of the electoral battle, the Aam Aadmi Party government in Punjab found itself in Prime Minister Modi's crosshairs. From the issue of corruption to law and order, Prime Minister Modi launched a no-holds-back barred attack, branding Aam Aadmi Party as Kattar Beiman Party. In a multi-front attack, the Prime Minister accused the Aam Aadmi Party government of pushing Punjab's youth towards drugs, claiming that drug peddlers roam freely in the state. The Prime Minister also took a swipe at the Congress Party, accusing it of being consumed by internal power struggles. The Aam Aadmi Party responded to the Prime Minister's attacks, with the party's national convener Arvind Kejriwal invoking the Ram Temple donation theft case and the Congress hitting back as well. Let's also listen into what the Prime Minister had to say.
13: साथियों, जनता की सेवा का काम साफ नियत से होता है, ईमानदारी की भावना है, लेकिन आज जो पार्टी पंजाब में सरकार में है उसकी ना नियत साफ है और ना ही वो ईमानदार है। उसकी पहचान ही कट्टर बेईमान पार्टी की है। पंजाब में आज क्या हो रहा है ये किसी से छिपा नहीं है। यहां विज्ञापनों के दम पर विश्वासघात की तस्वीर छिपाई जा रही है। आज पंजाब में कानून व्यवस्था बेहाल है। कब कहां गैंगवार हो जाए, किस दिशा से गोलियां चलने लगे कोई कह नहीं सकता। यहां व्यापार कारोबार करना मुश्किल हो गया है। सरेआम लोगों से फिरौती मांगी जा रही है। पुलिस थाने तक सुरक्षित नहीं है। आए दिन थानों पर अटैक होते हैं कि पंजाब का भविष्य भी बर्बाद किया जा रहा है। नशे के सौदागर खुलेआम घूम रहे हैं। पंजाब के युवाओं को नशे के दलदल में धकेला जा रहा है। दो तीन दिन पहले ही दिल्ली में इनके एक नेता को अदालत ने दोषी करार दिया है। उस पर दोष दंगे कराने का है, दोष एक पुलिस के आईबी अधिकारी की हत्या का है। और इन लोगों की बेशर्मी देखिए, अदालत ने सबूतों के आधार पर फैसला दिया, लेकिन ये लोग कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। ये लोग अदालत के फैसले भी मत मजहब उसमें भी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इनके वोट बैंक का सवाल है।
12: With that, we're slipping into a very short break. More news and updates on the other side. Stay with us on the broadcast.

0: देश का टायर जेके टायर।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
2: इंडिया इंक्स मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम।

0: हेलो
1: हेलो सर।
0: हेलो नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: हेलो,
2: बोल बोल
1: वी आर
0: कौन
1: पवन
0: बोल रहे
1: एंड
0: हैं?
1: भरत फ्रॉम स्काई रूट।
0: कौन बोल रहे
1: सर, वी आर वेरी वेरी प्रिविलेज्ड टू हियर यू। फर्स्ट योर वॉइस आफ्टर द सक्सेस।
0: हेलो
1: सर, थैंक्स अ लॉट फॉर योर विशेस एंड आर टीम, एंटायर टीम ऑफ स्काई रूट, मोर देन 1,000 पीपल आर हियर इन श्रीहरिकोटा एंड लिसनिंग टू यू। आर हार्ट्स आर स्वेलिंग विद प्राइड एंड दिस मीन्स अ लॉट टू अस। श्योर श्योर सर। और सर, आपका कार्ड जो आप भेजे थे, दैट हैज सक्सेसफुली रीच स्पेस एंड यू हैव रिटर्न वंदे मातरम। सो वंदे मातरम इज इन ऑर्बिट।
0: देखिए, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, जब आपने सुझाव भेजा तो मेरे मन में कई विचार आए थे, लेकिन आखिर जब मैंने सोचा मैं सिर्फ वंदे मातरम लिखूंगा, उसके दो कारण थे। इस बार हमारा देश वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहा है, तो मैं चाहता था कि इसको एक नए तरीके से मनाएं, और वंदे मातरम ही था जिसने देश के नौजवानों को हमेशा देश के लिए जीने मरने की प्रेरणा दी थी, और आज वंदे मातरम हमें देश के लिए जीने की ताकत देता है, और आप लोगों ने जी करके दिखाया है। आपका जो कुछ भी मिशन है, मैं इसको एक प्रकार से वंदे मातरम मिशन ही देखता हूं कि भारत माँ की गरिमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना, नई पीढ़ी को टेक्नोलॉजी को लाभ देना और नई पीढ़ी को टेक्नोलॉजी में आने के लिए प्रेरित करना, इन हर प्रकार से। और उसमें से मेरे मन में विचार आया है, तो लंबा कुछ ना लिखूं, सिर्फ वंदे मातरम मेरे भाव व्यक्त करूं। और मुझे खुशी है कि कल आपने उस बात को मीडिया से भी शेयर किया, और आज इस सफलता के साथ वंदे मातरम का भाव भी नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है।
1: थैंक यू सर।
0: मैं आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और जल्द से जल्द आपको मिलने के लिए निमंत्रण भी देता हूं।
1: थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट। Thank you, sir. We are privileged to hear you. I'm privileged to have your blessings. Entire team of Skyroot, entire India is really, really proud of your initiative to start the space program, open it up to private sector. And now we see historically, you know, first time probably a private company have built and successfully reached an orbit in the first attempt. Thanks a lot, it's happening from India. And this is a 100% designed in India rocket, 100% manufactured in India. And I think thanks to entire team Skyroot, whose average age is just 28 years.
0: हम इस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने में समर्थ हैं और आपने उस समर्थन को दिखाया है और मैं पक्का मानता हूं कि अब सबूत हमारे सामने है, साक्ष्य हमारे सामने है और ये आपकी टीम ने करके दिखाया है।
1: थैंक यू सर। थैंक यू। जरूर सर। एंड इन फैक्ट हम जब 2018 में स्काईरूट स्टार्ट किया था उस टाइम पॉलिसी नहीं थे, देर वॉज नो फंडिंग एनवायरमेंट और प्राइवेट सेक्टर में टैलेंट भी नहीं था और हम फिर से हमारा जॉब्स छोड़ के स्काईरूट चालू किया था। एंड नाउ वी आर वेरी प्राउड दैट द गवर्नमेंट इज एनेबल्ड एज and opened up the sector to private players, and now we stand as India's first private company which have launched a rocket to orbit and also created a global milestone all from India with a fully Indian team, 100% built in India. Thanks a lot for enabling this journey and also setting a vision, big vision for 50 launches in

0: what we are also getting to know at this point in time, Aditya, is that this the situation inside the hospital premises apparently has gotten a bit tense, and for that we have CGP spokesperson here, who in fact accompanied Gitanjali Sonam Wangchuk's wife inside the hospital. आप हमें बताइए कि अंदर का क्या माहौल है, क्या बता रहे थे आप?
1: अंदर जब हम गए तो हम 5 लोग थे और गीतांजलि मैम ने कहा कि मेरे साथ हैं सारे के सारे, मेरा स्टाफ है और मेरे घर के लोग हैं, आप अलाउ कीजिए। तो एक बार उन्होंने हमें अलाउ किया, वार्ड में ले गए हमें ऊपर। ऊपर ले जाके जब हमने देखा तो बहुत सारी पुलिस फोर्स और सीनियर ऑफिशियल्स पुलिस के वहाँ ऊपर हैं, कुछ गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी ऊपर हैं। तो तब उन्होंने थोड़ा सा आगे जाने के बाद हमें रोका और रोकने के बाद गीतांजलि मैम को बोला कि मैम आप अगर जाना चाहें तो चले जाइए, बाकी किस सबको हम नहीं आ सकते, आने दे सकते।

0: से भर गया है और कुछ तो अंदर चल रहा है, पता नहीं मैम को भी मिलने दिया नहीं मिलने दिया।
1: सो एज यू हर्ड हियर आदित्य, यू नो हियर पीपल मेकिंग इट वेरी क्लियर दैट सुनम वांगचुक्स वाइफ इज करंटली आस्किंग फॉर द मेडिकल रिकॉर्ड्स सो दैट इट कैन बी टेस्टेड इंडिपेंडेंटली एंड दे कैन shift him out of this hospital to a facility of their own, but currently that is something that the hospital is not agreeing upon. Over to you.
2: All right, Ishika, getting us the latest from the Safdarjung Hospital where Sonam Wangchuk is under treatment at the hospital. We'll keep a very close track on that story, but more breaking news coming in on the Sonam Wangchuk case. This time it is about somebody reaching court in the Wangchuk case, in the Wangchuk shift role.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: वी आर ओवर जिमी।
2: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
3: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
4: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy, every day.
5: उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार था। उसके दूसरे दिन दोनों ने मृत्यु घोषित कर दिया उसको। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है।
6: NDTV traced each and every affected family and also visited multiple hospital wards.
7: NDTV had reported extensively on why are these deaths happening in Rajasthan.
8: Checked all the medications, the drugs, everything. We called AIIMS Jodhpur also to do an investigation on it.
9: Big NDTV impact when it comes to Rajasthan maternity deaths. NDTV coverage has now

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: वी आर ओवर जिमी।
2: हे लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
3: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
4: आर प्योर शाही पनीर मसाला, delicious, healthy, everyday.
5: उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार, उसके दूसरे दिन दोनों ने मृत्यु घोषित कर दिया उसको। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है।
6: NDTV traced each and every affected family and also visited multiple hospital wards.
7: NDTV had reported extensively on why are these deaths happening in Rajasthan.
8: Checked all the medications, the drugs, everything. We called AIIMS Jodhpur also to do an investigation on it.
9: Big NDTV impact when it comes to Rajasthan maternity deaths. NDTV coverage has now forced

0: हुआ जिमी?
1: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है!
5: अरे मेरे राजा,
6: उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार। उसके दूसरे दिन दोनों ने मृत्यु घोषित कर दिया उसको। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है।
7: NDTV traced each and every affected family and also visited multiple hospital wards.
8: NDTV had reported extensively on why are these deaths happening in Rajasthan.
9: Checked all the medications, the drugs, everything. We called AIIMS Jodhpur also to do an investigation on it.
10: Big NDTV impact when it comes to Rajasthan maternity deaths. NDTV coverage has now forced

0: देश का टायर जेके टायर।
1: We are over, Jimmy.
2: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
3: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
4: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy, every day.
5: उसकी बिल्डिंग रुकी नहीं लगातार। उसके दूसरे दिन तो उन्होंने मृत्यु घोषित कर दी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: वी आर ओवर जिमी।
3: हे लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
5: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy, every day.
6: उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार था। उसके दूसरे दिन दोनों ने मृत्यु घोषित कर दिया उसको। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है।
7: NDTV traced each and every affected family and also visited multiple hospital wards.
8: NDTV had reported extensively on why are these deaths happening in Rajasthan.
9: Checked all the medications, the drugs, everything. We called AIIMS Jodhpur also to do an investigation on it.
10: Big NDTV impact when it comes to Rajasthan maternity deaths. NDTV coverage has now forced

0: देश का टायर जेके टायर।
1: We are over, Jimmy.
2: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
3: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
4: आर प्योर शाही पनीर मसाला, delicious, healthy, everyday.
5: उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार। उसके दूसरे दिन दोनों ने मृत्यु घोषित कर दिया उसको। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है।
6: NDTV traced each and every affected family and also visited multiple hospital wards.
7: NDTV had reported extensively on why are these deaths happening in Rajasthan.
8: Checked all the medications, the drugs, everything. We called AIIMS Jodhpur also to do an investigation on it.
9: Big NDTV impact when it comes to Rajasthan maternity deaths. NDTV coverage has now forced

0: some kind of political oversight as well. But here people were almost unequivocal. I'm sorry, keep politics out of it. 48% said no, we do not want political appointees in temples. That is what pretty much went wrong in Ayodhya as well. You had political appointees who then outsourced their work. There was no proper oversight. And we saw what happened. 24.2% can't say. Who should audit temple donations? A government auditor, say 38.7% of the people. There should be a proper investigation, regular audit. This is people's hard-earned money. It's a matter of trust. And we should have, if not through a political appointee, through regular government audits. The CAG perhaps should take up regular audits of what is happening to the temple funds. 19% say private auditor. And the second highest number is for a devotee committee. 21.4% say a committee made up of devotees. But even that becomes very subjective. Who is going to be appointed to this committee? Who will take the final call on that? Maximum number of people seem to be going with a government auditor. Should temple finances be made public under RTI? Should there be complete transparency? And I think everyone here has been unequivocal. 67%, more than two-thirds of the people say, yes, temple's finances should be made public. If I have donated, I want to know under RTI whether that money, whether those valuables are safe. Are they being constantly monitored? What's being done with them? Are they safe? 67% say yes, only 8% say no. And finally, final two questions. Is Ram Mandir CEO model shift the right move? This is the big reform that has now been brought in. And a large number of people say yes, 37% still not sure. Perhaps they are waiting to see how this is implemented, if this is the foolproof mechanism, if this is the right way ahead. But most people seem to think that this reform is in order and it is the right direction to take. And finally, do you trust the government appointed SIT probes on temple boards? In what should come as a relief for the government, 41% say yes, we do trust the government appointed SIT probe on temple boards. Only 33% are saying no. 25% remain undecided. So is this going to be a tricky issue for the government to negotiate when the parliament session starts? Let's do an impartial analysis of this. Joining us now is senior journalist Amit Chaugankar. Also with us is managing editor of NDTV, Akhilesh Sharma. Because stepping aside of the political wrangling, I'll start with you, Samir ji. आपको लगता है कि इस बार राम मंदिर का मुद्दा गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है?
1: नहीं पद्मजा, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को दिक्कत आने वाली है, क्योंकि सेशन शुरू होने के पहले जो मामला पूरा हुआ था राम मंदिर को लेकर, अगर आप विपक्ष का रुख देखेंगे तो अखिलेश यादव के अलावा किसी ने भी इससे बहुत मामले को उठाने की कोशिश नहीं की है। राहुल गांधी ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध ली। कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश ने ट्वीट किया, पवन खेड़ा ने इसके मामले में जिक्र किया, लेकिन कांग्रेस ने इसे कोई बड़ा एक इशू बनाने की कोशिश नहीं की। अखिलेश यादव जरूर इसको थोड़ा बनाने की कोशिश करते रहे। मुझे नहीं लगता कि इस मामले में कोई बड़ा डेवलपमेंट होगा और सरकार को कोई बहुत परेशानी विपक्ष इस मामले को लेकर करेगा। हालांकि कांग्रेस की जो बैठक हुई थी, संसदीय दल की बैठक, उसमें इस बात पर जरूर चर्चा हुई है। और मुझे लगता है कि कई अन्य विषय भी रहेगा जिस पर सरकार बात करेगी। हो सकता है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर चर्चा करें, एथेनॉल का जो 20% का जो मिक्स है उसको लेकर चर्चा की जाए, और बाकी जो भूपेन यादव के जो अधिकारी थे जिनको हटा दिया गया था उसको लेकर चर्चा करें। राम मंदिर पर चर्चा जरूर विपक्ष करने की कोशिश करेगा, लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को लेकर एग्रेसिव भूमिका अख्तियार की थी लगातार, तो मुझे इसकी संभावना कम नज़र आती है। लेकिन विपक्ष इस पार्लियामेंट सेशन को चलने नहीं देगा, तो उसे ये मुद्दा भी एक हाथ में लगा हुआ है जिस पर वो जरूर करेगा। सरकार इस पर बात करने की कोशिश करेगी, लेकिन विपक्ष कहता है कि वो इस मामले में सदन को चलने नहीं देगा। विपक्ष के पास बहुत और मुद्दे भी है, लेकिन यह मुद्दा विपक्ष मुझे लगता है कि अपने हाथ से गवा चुका है।
0: आप कह रहे हैं गवा चुका है, बट एटलीस्ट देयर इज सम वन इशू। दिस इज वन इशू अखिलेश जी, वेयर एवरीवन सीम्स टू बी ऑन द सेम पेज व्हेन इट कम्स टू द ऑपोजिशन, वेदर इट बी द समाजवादी पार्टी, शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस पार्टी। व्हाट इज द गवर्नमेंट स्ट्रेटजी टू टेक दिस ऑन इनसाइड पार्लियामेंट व्हेन इट इज ब्रॉट अप?
2: Well, Padmaja, I think what the opposition is demanding is the accountability. They want that somebody should take responsibility, whatever has happened, and the accountability should

0: on it. Same for Ram Temple, same for delimitation. Everyone else, Sanju Verma says, is talking to them.
1: Kindly allow a five-line uninterrupted response. BJP is a 25,000 crore empire. Nobody opposed it when I said that. That empire has to save itself. How do you save itself? The model is called scam. Sabotage, corruption, arm twisting and manipulation. That's Sanju Verma was giving fantastic numbers. She's an authentic BJP spokesperson. BJP has 8 spokespersons from other parties. A party who amassed 25,000 crore chooses other party spokesperson. Now, the numbers, I'll just quote some numbers to you. The North Zone, BJP has roughly 200 MPs and MLAs who join BJP from other parties. In the East Zone, there is 150. In the West Zone, this number is 250. In the South Zone, this number is 150. And in the Northeast Zone, this number is around 200. The party has been on a shopping spree using ED, CBI, and on a shopping spree to bring people from other parties to its fold. People rejected BJP in the 2024 elections. Rejected. Yet, the party, 25,000 crore empire, wants to hold itself. How does it hold itself? The model is the Assam model. In the parliament, on 17th April, 130 MPs spoke on delimitation and women reservation bill. Of this 70 opposition MPs, they clearly nuanced their views. The summary was this: you do the census, include caste census, then do women reservation, and then allow delimitation. But what you want to gerrymander the Indian map in a way that your scam will always continue.
0: Okay, Ghanshyam Tiwari, does the Samajwadi Party support the delimitation bill? Yes or no? With 120 seats coming to Uttar Pradesh, your state, the only state where you actually have any manner of politics of power, does the Samajwadi Party support the delimitation bill? Yes or no?
1: 130 MPs have more wisdom than what I have. Spoken in parliament, the bill was defeated. And what did it say?
0: No, but everyone has their own politics. Those same MPs, 130, have changed their tune this time around. Everyone is deciding for their own party. For your party, what is your stand?
1: I'll repeat. The stand is the same as it was in the parliament. Do the census and caste census that you have promised. Then enable women reservation bill and then go for delimitation. That is the right sequence that is democratic. But if you want to loop in the scam model, you want to capture the Indian democracy, go on a shopping spree in a 25,000
0: crore. Okay, if you're talking about a shopping spree, on a lighter note, I want to remind you, Ghanshyamji, even you were part of another party earlier. Now you've come to the Samajwadi Party.
1: It's not a lighter note.
0: It happens in politics.
1: Comment.
0: It happens.
1: I am not part of any shopping spree. This is not a job. But what BJP is doing is...
0: No, I'm sure you went because you started agreeing with Samajwadi Party as compared to the JDU. But it's fine. It happens in politics.
1: Using ED, using CBI, using corruption money, using all kinds of scandalous things. Never ever.
0: Okay, Ghanshyam Tiwari is clear, Sameer ji. Just a second, Sanju Verma, I'll let you respond. But very quickly, because Ghanshyam Tiwari, as a spokesperson and a firm believer in the ideology of Samajwadi Party, is saying that their stand will still remain the same. Samajwadi Party completely off board hai when it comes to delimitation?
2: फिलहाल तो ये नजर आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अखिलेश यादव के लिए बहुत मुश्किल होगा. अभी 8 महीने के बाद उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है. अखिलेश यादव इसको अपोज करेंगे, भारतीय जनता पार्टी से फ्लोर पे पास करा लेगी. फिर चुनाव में अखिलेश यादव को जवाब देना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी का इश्यू बनाएगी कि किस तरीके अखिलेश यादव ने सीट बढ़ाने को लेकर और महिला आरक्षण को लेकर किस तरीके से विरोध दर्ज किया. मुझे लगता है अखिलेश यादव के लिए बहुत आसान नहीं होगा. और अखिलेश यादव को ये लगता है कि भैया भारतीय जनता पार्टी पास कराने की स्थिति में है तो अखिलेश यादव उसका समर्थन भी कर सकते हैं.
0: और अभी ये बात हो रही थी कि राम गोपाल यादव को जो वो कह रहे थे, क्या नाम है उनका, मैं भूल गई, मंत्री है वहां पे उत्तर प्रदेश में, उन्होंने कहा था ना कि राम गोपाल यादव, ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने कहा है कि एक फाइल दी गई है, अमित शाह को फाइल दी है राम गोपाल यादव ने संसद के अंदर. तो क्या वो बात हुई है या नहीं हुई है?
2: नहीं, ओम प्रकाश राजभर का तो बहुत ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते. वो तो उन्होंने आज ही बयान जिस तरीके से दिया है कि भाई रहना होगा तो अमित शाह और मोदी के हिसाब से, अदरवाइज कोई पार्टी रह नहीं पाएगी. मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से तैयारी करी, और अखिलेश यादव इस बात को जानते हैं कि अब बिल पास होना है, और हो सकता है कि अखिलेश यादव अंतिम समय इसका समर्थन कर दे. अभी यह तय नहीं कि उसका विरोध करेंगे, क्योंकि इस तरह से उनका बहुत स्पष्ट बयान नहीं आया. ये बात सही है कि सरकार चाहेगी कि कांग्रेस को छोड़कर सारे दल इसका समर्थन करें, और लगभग सरकार वहाँ चली गई है. कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी फिलहाल नजर आ रही है. बाकी शरद पवार, एनसीपी की जो पार्टी के शरद पवार है, वो भी समर्थन देने को तैयार हो गए. झारखंड मुक्ति मोर्चा भी लगभग तैयार है समर्थन देने के लिए. तो ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होगा, और फिर चुनाव में उसका सामना करना पड़ेगा.
0: ओके, एनसीपी शरद पवार तो आई थिंक इज अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी ऑन इट्स ओन. इट डिजर्व्स अ लार्जर डिस्कशन. अखिलेश जी, एनी बैक चैनल विद समाजवादी पार्टी दैट यू नो ऑफ, इफ नॉट विद अखिलेश यादव डायरेक्टली, सम एमपीज इन हिज पार्टी कुड एब्स्टेन or vote a different way?
3: Well, that's a very interesting question.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: वी आर ओवर जिमी।
5: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
6: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैच मेकिंग सर्विस फॉर द एलीट।
7: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
8: उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार था, उसके दूसरे दिन उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया उसको। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है।
9: एनडीटीवी ट्रेस्ड ईच एंड एवरी अफेक्टेड फैमिली एंड आल्सो विजिटेड मल्टीपल हॉस्पिटल वार्ड्स।
10: एनडीटीवी हैड रिपोर्टेड एक्सटेंसिवली ऑन व्हाई आर दीस डेथ्स हैपनिंग इन राजस्थान।
11: Checked all the medications, the drugs, everything. We've called AIIMS Jodhpur also to do an investigation on it.
12: Big NDTV impact when it comes to Rajasthan maternity deaths. NDTV coverage has now forced action.
13: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
14: वाओ मामा, क्या स्वाद है!
13: अरे मेरे राजा।
15: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
7: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, aur pure vermicelli, swadisht. सेहतमंद हर रोज।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
16: दिस इज द
10: शिंदे फैक्शन कॉर्पोरेटर इज सीन असॉल्टिंग अ फीमेल डॉक्टर एंड नर्सेस एट अ हॉस्पिटल इन डोंबिवली।
17: ये जो वीडियो जो सामने आया है, जो एनडीटीवी ने ब्रेक किया है, आपको जरा भी शर्म नहीं आती है लेडी डॉक्टर्स, महिला डॉक्टर्स और नर्सेस पे हाथ उठाते हुए? आप एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, आपको किसने हक दिया हाथ उठाने का? आपको किसने हक दिया?
18: हमको हक हमारे पार्टी के बालदेव ठाकरे ने दिया। जहाँ भी अन्याय हो वहाँ आप अपना तरीका दिखा सकते।
19: Nearly 2 weeks after the shocking assault on doctors that outraged Maharashtra and the rest of the country, Shinde Sena's thug cooperator Ramesh Mhatre has quietly disappeared from the public eye and possibly gone on a week-long vacation.
20: The High Court has cancelled the bail granted to Mhatre and ordered him to surrender before the police, latest by 5 p.m. tomorrow. The NDTV impact, we've carried this story.
17: The cancellation of this thug operator's bail comes just about 19 hours after my show last night. Bombay High Court are clearly taking cognizance of all of the things that NDTV has highlighted over the last many days. That, coupled with NDTV's relentless coverage and everything that we revealed, became too much to bear, and that's the reason why the Bombay High Court had to step in.

0: देश का टायर जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।
3: We are over, Jimmy.
4: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
5: उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार, उसके दूसरे दिन उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया उसको। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है।
6: एनडीटीवी ट्रेस्ड ईच एंड एवरी अफेक्टेड फैमिली एंड आल्सो विजिटेड मल्टीपल हॉस्पिटल वार्ड्स।
7: एनडीटीवी हैड रिपोर्टेड एक्सटेंसिवली ऑन व्हाई आर दीज डेथ्स हैपनिंग इन राजस्थान।
8: Checked all the medications, the drugs, everything. We called AIIMS Jodhpur also to do an investigation.

0: वी आर ओवर जिमी।
1: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा,
5: उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार। उसके दूसरे दिन दोनों ने मृत्यु घोषित कर दिया उसको। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है।
6: एनडीटीवी ट्रेस्ड ईच एंड एवरी अफेक्टेड फैमिली and also visited multiple hospital wards.
7: NDTV had reported extensively on why are these deaths happening in Rajasthan.
8: Checked all the medications, the drugs, everything. We've called AIIMS Jodhpur also to do an investigation on it.
9: Big NDTV impact when it comes to Rajasthan maternity deaths. NDTV coverage has now

0: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: वी आर ओवर जिमी।
3: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
4: उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार था। उसके दूसरे दिन दोनों

0: लापरवाही है।
1: एनडीटीवी ट्रेस्ड ईच एंड एवरी अफेक्टेड फैमिली एंड ऑल्सो विजिटेड मल्टीपल हॉस्पिटल वार्ड्स।
2: एनडीटीवी हैड रिपोर्टेड एक्सटेंसिवली ऑन व्हाई आर दीज डेथ्स हैपनिंग इन राजस्थान।
3: Checked all the medications, the drugs, everything. We've called AIIMS Jodhpur also to do an investigation on it.
4: Big NDTV impact when it comes to Rajasthan maternity deaths. NDTV coverage has now forced

0: ओवर जिमी।
1: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।

0: जिमी।
1: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।

0: also attend several meetings of the NDA in the upcoming future in the monsoon session of Parliament.
1: I guess the fiery stage for the upcoming monsoon session has already been set, Aishwarya. Thank you so much for joining us on the broadcast and giving us all that perspective. The TMC crisis has just taken its biggest turn yet. On the eve of the monsoon session, Speaker Om Birla has granted separate seating to the 20 rebel MPs who broke away from the TMC and announced their merger with NCPI. Abhishek Banerjee issued open challenge to all rebel MPs and MLAs, daring them to come back to Mamta's camp and promising he will resign within 24 hours if they do. TMC MP Derek O'Brien also jumped in and accused Speaker Om Birla of mocking democracy over referring to 20 traitors as still being TMC MPs and then getting invites for the all-party meeting for now. The battle over who represents real TMC moves squarely into the Speaker's chamber and perhaps to the judiciary next.
2: हो गया अब 20 ना 22 आदमी सुना है ऐसा कुछ आदमी चला 20 आदमी गया है तो उसका तो देना ही पड़ेगा वो तो दूसरा विषय है
3: क्या लग रहा है कि अब जो बहुमत आप लोगों को चाहिए था बिल पास करने के लिए लगभग
2: अरे बिल तो पास होकर रहेगा बिल कौन रोकेगा
3: जो एनसीपीआई में गए हैं किस तरह से देख रहे क्या कहना चाहेंगे अलग स्टेटस जो
2: नहीं ये तो आई मीन इनकॉम्पिटेंट रिप्लाई है ये तो केंद्रीय नेता लोग बोलेंगे जो फ्लोर मैनेजर है वही बता सकते हैं लेकिन एक बात निश्चित है बिल पास हो जाएगा अब तृणमूल निर्मूल हो जाएगा
4: I'm not surprised. I mean, they seem to have the numbers. If they have 20 out of 26, it's very difficult for them to be denied their claim. But I'm sure that some of these issues, the parties concerned will also look at legal possibilities through the court. So there will be all avenues explored. But politically, what we have seen happening over the last few weeks, if that becomes reality, we'll just have to see how the numbers add up. Look, ultimately, it is a betrayal of the politics of principle that we all agree. Because you have been elected to be a strong opposition, you have chosen to be instead part of the ruling establishment. That is something which changes.
1: And another big political confrontation has taken place in West Bengal. The office of TMC MP Abhishek Banerjee in Diamond Harbour has been demolished by authorities using bulldozers. The administration says that the structure was an illegal construction and claims repeated notices and summons were ignored. The TMC, however, has alleged political vendetta, calling the demolition an act of vengeance and accusing the BJP of introducing what it calls the bulldozer culture. BJP has defended the action, saying that the office was built illegally on grabbed land and the law has simply taken its own course.
5: BJP'd netara, BJP'd jhanda niye, gerua phetti mathay bede. গেরুয়া উত্তরীয় পড়ে মুখ ঢেকে সেই পার্টি অফিসে ঢুকে তাণ্ডব লীলা চালিয়েছে এই সব ভিডিও আমাদের কাছে রয়েছে যদি ভাবেন যে বিজেপির নেতারা আমাদের বাঁচাবে আর যারা তৃণমূলের পার্টি অফিস ভাঙছেন আমি তাদের বলবো যে অনেক অত্যাচার তো করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের উপর কর্মীদের উপর পার্টি অফিস ভাঙা গুড়িয়ে দেওয়া যে ধারায় যে আইনে আজকে পার্টি অফিসগুলো ভাঙা হয়েছে না একই আইনে কিন্তু যখন আবার সরকার পাল্টাবে বিজেপির একটা পার্টি অফিস বাংলায় থাকবে না
6: নিন্দা করুঙ্গা কি অত্যাচার হয় আনডেমোক্রেটিক হয় ये तो किसी तरह से तृणमूल को हिट करने का कोशिश है हम निंदा करते हैं
7: इल्लीगल कंस्ट्रक्शन अगर था तो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन तो टूटना ही चाहिए तोड़ना ही चाहिए इल्लीगल कोई चीज़ तो खड़ा नहीं रहना चाहिए जो लीगल है वही खड़ा होना चाहिए जब टीएमसी की सरकार थी अभिषेक बनर्जी अपने आप को राजकुमार समझते थे तो जहां मर्जी हुई वहां कुछ कर लिए ऑफिस बना लिए प्लान भी नहीं किया जगह को लेकर डिस्प्यूट है किस कौन मालिक है इसको लेकर डिस्प्यूट है तो उस समय राजकुमार समझते थे अपने आप को तो अपना ज़मींदारी चलाते थे अब ज़मींदारी नहीं है यहाँ पे लॉ मानने वाली सरकार यहाँ पे है स्वाभाविक है आपको लॉ मानना पड़ेगा
1: It's a big NDTV impact. In a special Saturday sitting, the Bombay High Court has taken sumo to cognizance of the bail granted to Thug Shiv Sena corporator Ramesh Mathre and four other assailants who were booked for brutally assaulting three doctors of a civic hospital in Maharashtra Kalyan. As of NDTV coverage, Bombay High Court was forced to take the cognizance of the matter and Neta Ramesh Mathre had been ordered to surrender by 5 p.m. on the 19th of July. Remember, he had given health reasons minutes after he was arrested, hospitalized, but he's been asked to surrender after NDTV coverage forced the system.

0: suggests that the government is under pressure, and this could further fuel public outrage. Samajwadi Party MP Dimple Yadav termed Wang Chuk's removal as an attack on democracy.
1: ये मैं समझता हूँ सरकार की बहुत गलत नीति है कि जो व्यक्ति इतने दिनों से लगभग 20 दिन से सोनम वांगचुक जी अन्न को त्यागे हुए हैं, भूख हड़ताल कर रहे थे, किस मुद्दे को लेकर कर रहे थे, नौजवानों के भविष्य को लेकर और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगते थे, सरकार ने कोई संवाद नहीं किया, कोई चर्चा नहीं करी, कोई संज्ञान नहीं लिया। अब जब पूरे देश का प्रभाव पड़ रहा है और दबाव बन रहा था, तो अब उनको जबरदस्ती उठाकर अस्पताल ले जाया गया है सिर्फ इस बात से बचने के लिए कि सरकार की जवाबदेही तय ना हो। बेहतर ही होता सरकार संवाद करती और जो उनकी मांग थी उस मांग को पूरा करती। इस तरह जबरदस्ती उनको उठाकर अस्पताल ले जाना कहीं ना कहीं दिखता है कि सरकार बहुत दबाव में है।
2: अगर कोई व्यक्ति 19वें दिन अगर बीमार है तो 20वें दिन भी उतना ही बीमार होगा। अफसोस ये है कि सरकार इनके सामने डर गई है और 20 तारीख का आह्वान जो पूरे देश में सोनम वांगचुक और अखिल जनता पार्टी के फेवर में, या हम ये कहें कि इस देश की युवाओं के फेवर में है, या हम ये कहें कि इस देश के जनजी के जो फेवर में है, उससे सरकार थर थर काँप रही है। इसलिए आज सोनम वांगचुक जी को धरना स्थल से उठा के ले गई है। वो कहीं नहीं चाहती है कि भारत सरकार के खिलाफ इतना बड़ा आक्रोश पूरे सड़कों पर आए। लेकिन आप गलती कर रहे हैं सरकार, आप युवाओं की बात नहीं सुन रहे हैं, आप बेरोजगारियों की बात नहीं सुन रहे हैं। आज ये सिर्फ आपने धरना रोका है लेकिन इस देश के युवाओं में जो दिल धड़क रहा है वो आपके खिलाफ हो चुका है और आपके खिलाफ आपको सत्ता से हटा के रहेगा।
0: India's space story has entered a new era. For the first time ever, a privately built Indian rocket has successfully reached the orbit. Hyderabad-based Skyroot Aerospace Vikram 1 has scripted history with Mission Agman, signalling the arrival of India's private space industry on the global stage. The mission not only marks a breakthrough for one company, but also a major milestone in India's expanding commercial space ambitions.
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
4: And we have liftoff of Vikram 1.
5: At 12:05 and 30 p.m., Vikram 1 thundered off the first launch pad at Sriharikota, becoming the first privately developed Indian rocket to attempt an orbital mission. A launch years in the making and one that instantly entered the history books. Mission Agaman marks more than just a successful launch. It announces India's arrival in the global private launch market. With this mission, Hyderabad-based Skyroot Aerospace joins a select group of private companies worldwide capable of designing, building and launching orbital rockets. There was anxiety and anticipation during a brief planned hold just minutes before the scheduled 11:30 a.m. launch.
6: We have received confirmation that this is a planned hold and we have been advised to stay on standby.
7: Minus 15 seconds.
5: The countdown resumed and soon the anxiety gave way to jubilation. Standing nearly 7 stories tall, Vikram 1 is an all-carbon composite multi-stage launch vehicle. It is powered by propulsion systems developed entirely in-house, including a 3D printed engine and high-thrust solid rocket motors. Designed to carry satellites weighing up to 350 kilograms into low Earth orbit, the maiden mission targeted a 450-kilometer orbit. The rocket also carried Cosmic Bloom, an artwork by Cosmos, diamonds along with microscopic sculptures honoring three icons of Indian science, Sir C.V. Raman, Dr. Vikram Sarabhai and Dr. A.P.J. Abdul Kalam. It also carried signatures of the engineers and technicians who built the rocket, along with a simple handwritten message from Prime Minister Modi, Vande Mataram.
4: Both satellites have been deployed successfully and we have reached space on our first attempt successfully.
5: At 12:21 p.m., Mission Control confirmed payload injection into the intended orbit. The announcement echoed across the control room.
4: The Cosmos satellite to perform

0: questioned why Centre did not engage in dialogue, adding that the forced removal suggests that the government is under pressure and this could further fuel public outrage. Samajwadi Party MP Dimple Yadav termed Wang Chuk's removal as an attack on democracy.
1: ये मैं समझता हूँ सरकार की बहुत गलत नीति है कि जो व्यक्ति इतने दिनों से लगभग 20 दिन से सोनम वांगचुक जी अन्न को त्यागे हुए हैं, भूख हड़ताल कर रहे थे, किस मुद्दे को लेकर कर रहे थे, नौजवानों के भविष्य को लेकर और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगते थे, सरकार ने कोई संवाद नहीं किया, कोई चर्चा नहीं करी, कोई संज्ञान नहीं लिया। अब जब पूरे देश का प्रभाव पड़ रहा है और दबाव बन रहा था तो अब उनको जबरदस्ती उठाकर अस्पताल ले जाया गया है सिर्फ इस बात से बचने के लिए कि सरकार की जवाबदेही तय ना हो। बेहतर ही होता सरकार संवाद करती और जो उनकी मांग थी उस मांग को पूरा करती। इस तरह जबरदस्ती उनको उठाकर अस्पताल ले जाना कहीं ना कहीं दिखता है कि सरकार बहुत दबाव में है।
2: अगर कोई व्यक्ति 19वें दिन अगर बीमार है तो 20वें दिन भी उतना ही बीमार होगा। अफसोस ये है कि सरकार इनके सामने डर गई है और 20 तारीख का आह्वान जो पूरे देश में सोनम वांगचुक और आक्रोश जनता पार्टी के फेवर में, या हम ये कहें कि इस देश की युवाओं के फेवर में है, या हम ये कहें कि इस देश के जनजी के जो फेवर में है, उससे सरकार थर थर काँप रही है। इसलिए आज सोनम वांगचुक जी को धरना स्थल से उठा के ले गई है। वो कहीं नहीं चाहती हैं कि भारत सरकार के खिलाफ इतना बड़ा आक्रोश पूरे सड़कों पर आए। लेकिन आप गलती कर रहे हैं सरकार, आप युवाओं की बात नहीं सुन रहे हैं, आप बेरोजगारियों की बात नहीं सुन रहे हैं। आज ये सिर्फ आपने धरना रोका है लेकिन इस देश के युवाओं में जो दिल धड़क रहा है वो अब आपके खिलाफ हो चुका है और आपके खिलाफ आपको सत्ता से हटा के रहेगा।
0: India's space story has entered a new era. For the first time ever, a privately built Indian rocket has successfully reached the orbit. Hyderabad-based Skyroot Aerospace Vikram 1 has scripted history with mission Agman, signalling the arrival of India's private space industry on the global stage. The mission not only marks a breakthrough for one company, but also a major milestone in India's expanding commercial space ambitions.
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
4: And we have liftoff of Vikram 1.
5: At 12.05 and 30 p.m., Vikram 1 thundered off the first launch pad at Sriharikota, becoming the first privately developed Indian rocket to attempt an orbital mission. A launch years in the making and one that instantly entered the history books. Mission Agaman marks more than just a successful launch. It announces India's arrival in the global private launch market. With this mission, Hyderabad-based Skyroot Aerospace joins a select group of private companies worldwide capable of designing, building and launching orbital rockets. There was anxiety and anticipation during a brief planned hold just minutes before the scheduled 11:30 a.m. launch.
6: We have received confirmation that this is a planned hold and we have been advised to stay on standby.
7: Minus 15 seconds.
5: The countdown resumed and soon the anxiety gave way to jubilation. Standing nearly 7 stories tall, Vikram 1 is an all-carbon composite multi-stage launch vehicle. It is powered by propulsion systems developed entirely in-house, including a 3D printed engine and high-thrust solid rocket motors. Designed to carry satellites weighing up to 350 kilograms into low Earth orbit, the maiden mission targeted a 450 kilometer orbit. The rocket also carried Cosmic Bloom, an artwork by Cosmos, diamonds along with microscopic sculptures honoring three icons of Indian science, Sir C.V. Raman, Dr. Vikram Sarabhai and Dr. A.P.J. Abdul Kalam. It also carried signatures of the engineers and technicians who built the rocket, along with a simple handwritten message from Prime Minister Modi, Vande Mataram.
4: Both satellites have been deployed successfully and we have reached space on our first attempt successfully.
5: At 12:21 p.m., Mission Control confirmed payload injection into the intended orbit. The announcement echoed across the control room.
4: The Cosmos satellite to
8: Vikram 1 Agaman mission is a grand success.
5: Cheers erupted at the Satish Dhawan Space Center as years of hard work culminated into a historic

0: led by Sudip Bandyopadhyay will also attend several meetings of the NDA in the upcoming future NDA monsoon session of Parliament.
1: I guess the fiery stage for the upcoming monsoon session has already been set, Aishwarya. Thank you so much for joining us on the broadcast and giving us all that perspective. The TMC crisis has just taken its biggest turn yet. On the eve of the monsoon session, Speaker Om Birla has granted separate seating to the 20 rebel MPs who broke away from the TMC and announced their merger with NCPI. Abhishek Banerjee issued open challenge to all rebel MPs and MLAs, daring them to come back to Mamta's camp and promising he will resign within 24 hours if they do. TMC MP Derek O'Brien also jumped in and accused Speaker Om Birla of mocking democracy over referring to 20 traitors as still being TMC MPs and then getting invites for the all-party meeting for now. The battle over who represents real TMC moves squarely into the Speaker's chamber and perhaps to the judiciary next.
2: हो गया अब 20 ना 22 आदमी सुना है ऐसा कुछ आदमी चला 20 आदमी गया है तो उसका तो देना ही पड़ेगा वो तो दूसरा विषय है
3: क्या लग रहा है कि अब जो बहुमत आप लोगों को चाहिए था बिल पास करने के लिए लगभग
2: अरे बिल तो पास होकर रहेगा बिल कौन रोकेगा
3: जो एनसीपीआई में गए हैं किस तरह से देख रहे क्या कहना चाहेंगे अलग स्टेटस जो
2: नहीं ये तो आई मीन इनकॉम्पिटेंट रिप्लाई है ये तो केंद्रीय नेता लोग बोलेंगे जो फ्लोर मैनेजर है वही बता सकते हैं लेकिन एक बात निश्चित है बिल पास हो जाएगा अब तृणमूल निर्मूल हो जाएगा
4: I'm not surprised. I mean, they seem to have the numbers. If they have 20 out of 26, it's very difficult for them to be denied their claim. But I'm sure that some of these issues, the parties concerned will also look at legal possibilities through the courts. So there will be all avenues explored. But politically, what we have seen happening over the last few weeks, if that becomes reality, we'll just have to see how the numbers add up. Look, ultimately, it is a betrayal of the politics of principle that we all agree. Because you have been elected to be a strong opposition, you have chosen to be instead part of the ruling establishment. That is something which changes.
1: And another big political confrontation has taken place in West Bengal. The office of TMC MP Abhishek Banerjee in Diamond Harbour has been demolished by authorities using bulldozers. The administration says that the structure was an illegal construction and claims repeated notices and summons were ignored. The TMC, however, has alleged political vendetta, calling the demolition an act of vengeance and accusing the BJP of introducing what it calls the bulldozer culture. BJP has defended the action, saying that the office was built illegally on grabbed land and the law has simply taken its own course.
5: BJP's netara, BJP's jhanda niye, gedua phetti mathai bede. গেরুয়া উত্তরীয় পড়ে মুখ ঢেকে সেই পার্টি অফিসে ঢুকে তাণ্ডব লীলা চালিয়েছে এই সব ভিডিও আমাদের কাছে রয়েছে যদি ভাবেন যে বিজেপির নেতারা আমাদের বাঁচাবে আর যারা তৃণমূলের পার্টি অফিস ভাঙছেন আমি তাদের বলবো যে অনেক অত্যাচার তো করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের উপর কর্মীদের উপর পার্টি অফিস ভাঙা গুড়িয়ে দেওয়া যে ধারায় যে আইনে আজকে পার্টি অফিসগুলো ভাঙা হয়েছে না একই আইনে কিন্তু যখন আবার সরকার পাল্টাবে বিজেপির একটা পার্টি অফিস বাংলায় থাকবে না
6: নিন্দা করুঙ্গা কি অত্যাচার হয় আনডেমোক্রেটিক হয় ये तो किसी तरह से तृणमूल को हिट करने का कोशिश है हम निंदा करते हैं
7: इल्लीगल कंस्ट्रक्शन अगर था तो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन तो टूटना ही चाहिए तोड़ना ही चाहिए इल्लीगल कोई चीज़ तो खड़ा नहीं रहना चाहिए जो लीगल है वही खड़ा होना चाहिए जब टीएमसी की सरकार थी अभिषेक बनर्जी अपने आप को राजकुमार समझते थे तो जहां मर्जी हुई वहां कुछ कर लिए ऑफिस बना लिए प्लान भी नहीं किया जगह को लेकर डिस्प्यूट है किस कौन मालिक है इसको लेकर डिस्प्यूट है तो उस समय राजकुमार समझते थे अपने आप को तो अपना ज़मींदारी चलाते थे अब ज़मींदारी नहीं है यहाँ पर लॉ मानने वाली सरकार यहाँ पर है स्वाभाविक है आपको लॉ मानना पड़ेगा
1: It's a big NDTV impact. In a special Saturday sitting, the Bombay High Court has taken suo motu cognizance of the bail granted to Thug Shiv Sena corporator Ramesh Mathre and four other assailants who were booked for brutally assaulting three doctors of a civic hospital in Maharashtra Kalyan. As of NDTV coverage, Bombay High Court was forced to take the cognizance of the matter and Neta Ramesh Mathre had been ordered to surrender by 5 PM on the 19th of July. Remember, he had given health reasons minutes after he was arrested, hospitalized, but he's been asked to surrender after

0: ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार। उसके दूसरे दिन उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया उसको। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है।
1: एनडीटीवी ट्रेस्ड ईच एंड एवरी अफेक्टेड फैमिली एंड ऑल्सो विजिटेड मल्टीपल हॉस्पिटल वार्ड्स।
2: एनडीटीवी हैड रिपोर्टेड एक्सटेंसिवली ऑन व्हाई आर दीज डेथ्स हैपनिंग इन राजस्थान।
3: Checked all the medications, the drugs, everything. We've called AIIMS Jodhpur also to do an investigation on it.
4: Big NDTV impact when it comes to Rajasthan maternity deaths. NDTV coverage has now forced

0: ये तो केंद्रीय नेता लोग बोलेंगे, जो फ्लोर मैनेजर है वही बता सकते हैं, लेकिन एक बात निश्चित है, बिल पास हो जाएगा, अब तृणमूल निर्मूल हो जाएगा।
1: I'm not surprised. I mean, they seem to have the numbers. If they have 20 out of 26, it's

0: ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार। उसके दूसरे दिन उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया उसको। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है।
1: एनडीटीवी ट्रेस्ड ईच एंड एवरी अफेक्टेड फैमिली एंड आल्सो विजिटेड मल्टीपल हॉस्पिटल वार्ड्स।
2: एनडीटीवी हैड रिपोर्टेड एक्सटेंसिवली ऑन व्हाई आर दीज डेथ्स हैपनिंग इन राजस्थान।
3: Checked all the medications, the drugs, everything. We have called AIIMS Jodhpur also to do an investigation on it.
4: Big NDTV impact when it comes to Rajasthan maternity deaths. NDTV coverage has now fallen.